आज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैंत जशन उपजायो आदि अंत कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार दसही को हमारी सकल प्रजा जने आप सवारी सेवकन को

टरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहिन हरि हो ताके ताप तन कमो हरे हो रिद सिद्ध कर्मो सब होई दोष्ट शास्व सकन कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास दे ताही उभारा जिन नर नाम तिहारु कहा दारिद दोष्ट दुख ते रहा खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दैले उबारी सर्ब ठार मोह सहाई दोष दोख ते ले बचाई सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक न माने ओ सिमरत शास्त्र वेद सब बहुपेद कहें।

नाम जिनकै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सचे साहेब क्या नाहीं करते रहे साचा नाम मेरा आधारू साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरगट हो जिस दियां ही वड्याइया कहे नानक सुनो संत सब धरो प्यारू साचा नाम मेरा आधारू वाजे पंच शब्द तित कर सभागे शब्द वाजे कलाजित कर धारिया पंच दूत तुद वस किते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुदियन को से नाम हर कह लागे कह नानक तै सुख हुआ तित कर अनहद वाजे आनद सुनो बडभागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभु पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सची बाणी संत साजन पै सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंदावणी महला पंजवां थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचार अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को पुंचै किसका होए उधारो एह वास्त तजी न जाई नित नित रख उर धारो तम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसारो श्लोक महला पंजवां तेरा की

0: नानक शरण गही सुख सागर जन्म मरण फिर गर्भ न दुख। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। ओ सुहिला राग गौड़ी दीपी महला पहला एक ओंकार। सतगुरु प्रसाद जय कर कीर्ता खिये करते का हुई विचार। चित कर गाव सुहिला सिवर सृजनार। तुम गाव हो मेरे निरपव का सुहिला हो वारी जित सुहिला है सदा सुख हो राव। नित नित जी अड़े संभालिया नंद देखेगा देवन हार। तेरे दान है कीमत न पवे तिस दाते गौण समार। समत सहा लिखया मिल कर पावो तेल देह सजन आसी सड़ियां ज होवै साहिब सुमेल। कर करे हो पहुंचा सदने नत पवन सदन हारा सिमरी है नानक से देह अवन। राग आसा महला पहला छे घर छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको वेस अनेक। बाबा जय कर करते कीरत होए सो कार राख बढ़ाई तोय राव। विश्व जसिया घड़िया पहरा आंसती वारी माह हुआ सूरज को रुत अनेक। नानक करते के केते वेश राग तनासरी महला पहला गगन मै थाल रब चंद दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती। धूप माल्या नलो पवन चवरो करे सगल बन राय फुलंत ज्योति। कैसी आरती होए पवखंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत तेरी राव। सहस तब नैन नन नैन है तुवे कहो सहस मूर्त नन एक तो ही। सहस पद बिमल नान एक पद गंध बैन सहस तब गंध रव चलत मोही। सब मैं ज्योत ज्योत है सोए किस द चानण सब मैं चानण होए। गुरसाखी ज्योत प्रगट होए जो तिस भावै सो आरती होए। हार चरण कबल मकरंद लोभित मनो अन जनो मोहे आही प्यासा। कृपा जल दे नानक सारिंग कौ होए जाते तेरा नाए वासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा। काम क्रोध नगर बहु परया मिल साधु खंडल खंडा हे। पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मान हार लेव मंडल मंडाही। कर साधु अंजलि पुन वडाही कर डंडौत पुन वडाही राव। साकत हर रस साधना जानिया तने अंतर हो मैं कंडाहे। ज्यों ज्यों चलहे जुगै दुख पावहे जमकाल सहे सिर डंडाही। हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण पव खंडाहे। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडाई। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख बड बड़ा हे। जन नानक नाम दार टेक है हर नाम ही सुख मंडाहे। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा। करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला इहां खाट चलो हर लाहा आग बसन सुहेला। औद घट दिन सर नारी मन गुरमिल सुवारी राव। हे संसार विकास संसे मह करियो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाई पिया वह रासु अकाश कथा तिन जानी। जाको आए सोई बिहा जहो हर गुर ते मने वसेरा निज कर महल पावो सुख सहजे बौर न होए गो फेरा। अंतरजामी पुरख विधाते शरदा मन की पूरे नानक दास है सुख मांगे मोह कौ कर संतन की पूरे। अंतरजामी पुरख विधाते शरदा मन की पूरे नानक दास है सुख मांगे मोह कौ कर संतन की पूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ

भगत मित उदार, जल थल अमंड दिस विश अभंड, जल थल महंत दिस विश बेअंत, अनुभव अनास स्थित तर तुरास, आजान बाह एक सदा, ओंकार आद कछनी अनाद, खल खंड ख्याल गुर बर अकाल, घर घर प्रणाम चित चरण नाम, अनखिज गात आज दिन बात, अनछंज गात अनरंज बात, अनटुट भंडार अनठट अपार, आठ धर्म अत ठीठ करम, अन भ्रण अनंत दाता महंत। देखो हर छंदी चाल बदलती है, जे सानू ये समझ आ जाए फिर उस चाल विच पाठ करिए ते आनंद वधेगा। ये नहीं कि जिन्हें नहीं चाल पता हो सीधा भी पढ़ते नहीं कोई बात नहीं, पर मेरा मतलब दसना है कि कलगिया वाले पातशाह ने क्योंकि छंदाबंदी की वरतों की थी, वो बहुत वड्डे कविया के महान कवि ते कविया के कदरदान, ये उन्होंने गुण है। पातशाह कहते ने मुन मन प्रणाम, मुन कहते ने ऋषि मुनि महात्मा भगती करने वाले, मन विच हुण मन दे नन्ने नूं सहारी है, मुनि जन तुहानू मन विच हर वेले प्रणाम करते नमस्कार करते, गुण गण मुधाम, गुण का मतलब है सिफतां विशेषताएं, गण का मतलब है बहुतियां, मुधाम का मतलब है सदा कायम रहने वाले। तुहाडे जो गुण हैं वो गण बहुते हैं, उन्हां दी गिणती नहीं कीती जा सकती। जिन्होंने उसकी अस्थी नूं जान लिया उन्हें कहा कबीर सात समुंदर मस्त करो, कलम करो बन राय, बसुदा कागज जो करो हर जस लिखण ना जाए, गुण गण मदाम। अर बर अगन, अर कहते ने वैरी, बर कहते ने वड्डे तो वड्डे वैरी तो भी तुसी कदे दबदे नहीं, भाव कोई वड्डे तो वड्डा ताकतवर हरनाक्ष वर्गा, जिहड़ा आंदा जले हरनाक्ष थले हरनाक्ष है भी हरनाक्ष होसी भी हरनाक्ष, पर जदों नूं सोधन ते आए उहदी हर शर्त पूरी कीती, आख्या वेख लै हरनाक्ष ना मैं बंदा ते ना मैं जानवर हां, ना मैं अंदर ना मैं बाहर, ना मैं तैनूं किसी शस्त्र नाल मारना, ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦਲੀਜ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨੌਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵ ਅਰ ਬਰ ਅਗਨ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੈਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਹਰ ਨਰ ਬਰਬਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ ਹਰ ਨਰ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਪ੍ਰਭੰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੰਜਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, तथा तुसी इतने समर्थ हो कि जिन्हू चाहो उन्हू चंगी तरह रगड़ के भी रख जाते। अनगन प्रणाम, अनगन अनगिनत ही तुहानू प्रणाम करने वाले हैं। मुन मन सलाम, अनेक ही मुनि जन तुहानू सलाम करते ने, भाव नतमस्तक होते, हर नर अखंड, अखंड का मतलब है जिदा खंड ना किया जा सके, जिन्हों खंडन ना किया जा सके, तुहाडी ओ हस्ती है जिसनों कोई खंडन नहीं कर सकता। बार नर अमन, तुसी ऐसे श्रेष्ठ हो कि तुहानू किसी की मुताजी नहीं है, अमन का मतलब

मैं किसी का मंडन करने तो लोड़ पर दो अखर ने एक खंडन करना एक मंडन करना तो अनु किसी की कोई मुताजी नहीं है। अनुभव अनास अनुभव कहते ने ज्ञान रूप अनास ना नास होने वाले मन मन प्रकाश अनेक मुनि भगत जनों के मन भी तुसी प्रकाश गुण गन प्रणाम अनेक ही गुणी जन तुहानू प्रणाम करते जल थल मुदाम तुसी खुशकी विच भी ते पानी विच भी सब जगह मौजूद अनछिज अंग छिजना तुहानू दस्या सी भी कमजोर हो जाना पड़ जाना तुहाडे जो अंग तुहाडी जो हस्ती है वह कदे छिजदी नहीं उन्हों कदे कोई पुरातनता नहीं आती कदे बुढ़ेपा नहीं आता। आसन अभंग तुहाडा जो तख्त है टिकाणा है वह अभंग कदे नाश नहीं होता। उपमा अपार तुहाडी जो कीर्ति है अपार उसका कोई पारावार नहीं। गतमित उदार तुहाडी गतमिति बहुत है भाव तुहाडी गतमिति इतनी वड्डी है कि उनको जान नहीं सकते तुसी उदार हो। असी रोज अरदास कहने तुमरी गतमित तुम ही जाने नानक दास सदा करो तुसी इतने उदार हो खुले दिल वाले। असी ते हर चीज किसी नूं दिंदे आ सौ बारी सोचते पर उन्हें जो पंडाल दिते ने उन्हें कदे भी कंजूसी नहीं बरती। जल थल अमल तुसी जल अते थल विच सुभायमान दिस विस अभंड दिस विस जिस कहते ने दिशावान चार दिशावान ने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ते जे उना विच होर लकीर मार दिए ते फिर ईशानू कोने बन जाते उन विस कहते तुसी हर दिशा विच हर विशा विच उन्हां गुठां विच भी तुसी अभंड हो भाव तुहानू कोई नाश नहीं कर सकता। जल थल महंत महंत कहने वड्डे जल विच भी ते थल विच भाव हर जगह तुसी महंत वड्डे हो दिस विस बेअंत हर दिशा ते विशा विच तुसी बेअंत हो। ये नहीं कि किधरे तुसी घट हो किधरे वध हो नहीं तुसी इकसार वर्त रहे। अनुभव अनास ये पहले भी आ चुका है तुसी ज्ञान रूप हो पर अनास ना नाश होगा। त्रित तर तुरास तुरतों ही तुसी तर हो त्रित तीरज हो भाव तीरज दे भी तुसी आसरे हो। आजान बा इहदे अर्थ आम विद्वाना ने लम्मियां बाहवां कीता है जिहदियां बाहवां बहुत लम्मियां ने भाव जिहदे वसीले जिहदे काम करन दे तरीके तौर बड़े लंबे वह जो चाहे सो कर सकदा। बाणी च लिखिआ जल ते थल कर थल ते कूआं कूप ते मेल करावे धरती ते आकाश चढ़ावे चढ़े आकाश चढ़ावे। आजान बा एक कह सकदा तुसी सदा हमेशा अपने वर्गे एक आप हो तुहाडा होर कोई बराबर नहीं। ओंकार आप आदि कहने मुढ़ मुढ़ तो तुसी ब्रह्म स्वरूप हो व्यापक हो। कथनी अनाथ कथनी का मतलब है बयान कर अनाथ जिसका आदमी नहीं जाने जा सकता। खल खंड ख्याल खल कहने ने दुष्टा मूर्खा तुसी ख्याल दे नाल फुरने दे नाल वड़े वड़े दुष्टां दा खंडन कर दिंदे। गुर भरे अकाल तुसी बहुत वड़े हो पर काल दी पकड़ तुरे तो कर कर प्रणाम तुहानू हर जगह ते हर हिरदे विच प्रणाम कीती जांदी। चित चरण नाम तुहाडा जो पवित्र नाम है तुहाडी जो हस्ती है वो हर चित विच विराजमान है। अनछिज गात गात कहते ने शरीर तुहाडी जो हस्ती है अनछिज है। देखो असी तां कदे बच्चे सी
फिर जवान हो गए, फिर वो बुढ़े हो गए। साडा शरीर खिंच गया, कमजोर हो गया, पर तुहाडी अस्थि करे कमजोरी नहीं। आज जना बाप तुसी किसे गले कदे आजज नहीं होंगे, आजज समझ जाओ। जदों असि किसे दे मोहताज हो जाइए, जदों सानू बच्चियां बच्चियां अगे हाथ अड़ना पैदे, पुत्रा चीज दे दे, तुसी कदे किसे गले आजज नहीं है। अनझंझ बात तुहाडी जो हस्ती है वो झंझटा तो रहत है, भाव तुहानू कदे कोई साडे वांगू झंझट नहीं पैंदा। तुहाडे ते सिर्फ फुरने की गल है, फट हो के खम ने अनरंज बात, तुसी कदे किसे गले अनरंज नहीं होते, भाव तुहानू कदे भी कोई उदासी नहीं, तुसी हर तरह सर्व कला समर्थ अन टुट भंडार। तुहाडे जो गोदाम ने स्टोर ने वह अन टुट ने, असी कढ़ी जाने खाई जाने, रोज तुसी पढ़ दो जुगा जुगंतर खाई खाई, पता नहीं कदों तो खा रहे। अनठट अपार, एक आदमी होंगे कोई काम कर लिए उसनू स्कीम बनानी पैंदी, तुहानू कोई किसे तरह की स्कीम बनाने की लोड़ नहीं, तुहानू किसे दे आसरे की लोड़ नहीं, अपार तुहाडा पारावार भी नहीं पाएगा। आदित धर्म, इत्थे धर्म का मतलब है जो कायदा कानून मर्यादा तुसी एक बारी बना दिती है वो सानू नहीं नजरी आती, बाबे नानक नू नजरी आती है। वो कहंदे ने पै विच पवन वह सदभाओ, पै विच चलने रख दरियाओ, पै विच अगन कड़े बेकार, पै विच धरती दबी पार, पै विच सूरज पै विच चंद को करोड़ी चलत न जा। अत ठीक कर, जेड़ा काम तुसी करना चाहते हो उहदे सामने कोई रुकावट नहीं खड़ी। ठीकता दे नाल तुसी वह काम कर ही देंदे हो। अण ब्रण अलग, तुहाडी अस्थी नू कदे कोई ब्रण कोई जख्म नहीं लाया जा सकता, अनंत उदांत भी नहीं पाया जा सकता। और दाता महान भावे कोई किन्ना वड्डा दानी हो जाए, तुहाडा बराबरी कोई नहीं कर सकता। तुसी दातियां विच वड्डे महंत दाते हो। हर बोल मना छंद तो प्रसाद, करुणा लिया है अर घालिया है, खल खंडन है मैं मंडन है, जगतीश्वर है परमेश्वर है, कल कारण है सर्ववारण है, चित के तन है जग के कण है, मन मानिया है जग जानिया है। इनू मानिया नहीं बोलना, मैं कल भी बेनती की थी कि जदों अगे गैया अखर आ जाए तो उसकी प्यारी प्यारी बन जाए, ये नियम है, इसलिए इनू मन मानिया है बोलना, मंगे नहीं। मन मानिया है जग जानिया है, सर्वंग भर है सर्वंग कर है, सर्वपासिया है सर्वनाशिया है, करुणाकर है विश्वंबर है, सर्वेश्वर है जगतेश्वर है, ब्रह्मंड से है कलखंड से है, पर ते पर है करुणा कर है, अजपा जप है अथपा थप है, अकृता कृत है अमृता अमृत है, अमृता अमृत है करुणा कृत है। ये तुहाडा उच्चारण थोड़ा गलत है, बहुते अमृता पड़ी जाते, अमृता नहीं है, अमृता अमृता अमृत है, अमृता अमृत है करुणा कृत है, अकृता कृत है धरणी धृत है, अमृतेश्वर है परमेश्वर है, अकृता कृत है अमृता अमृत है,
ਅਜਵਾਕ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਨਰ ਨਾਇਕ ਹੈ ਖਲਕਾਇਕ ਹੈ ਵਿਸ਼ੰਬਰ ਹੈ ਕਰੁਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨਿਪ ਨਾਇਕ ਹੈ ਤਲਪਾਇਕ ਹੈ ਬਾ ਭੰਜਨ ਹੈ ਅਰਗੰਜਨ ਹੈ ਰਿਵ ਤਾਪਨ ਹੈ ਜਬ ਜਾਪਨ ਹੈ ਅਕਲੰਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਰਬਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਕਲੰਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਕਲੰਗ ਕਲਾ ਤੋਂ ਬਨਾਵਟ ਤੋਂ ਰਹਿ ਅਕਲੰਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਰਬਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਰਤਾ ਕਰ ਹੈ ਹਰਤਾ ਹਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮ ਹੈ ਸਰਬਾਤਮ ਹੈ ਆਤਮ ਬਸ ਹੈ ਜਸ ਕੇ ਜਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਚਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਭਾਵ ਉਦੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਪ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਇਹ ਚਾਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਾਈਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਰਥ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਹਨ ਕਰੁਣਾਲਿਆ ਹੈ ਆਲਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਘਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸੌ ਚਾਲਿਆ ਭੋਜਨਾਲਿਆ

गुरपुरा जिन सिमरिया सही पै निहाल नानक नाम आराधना कारज आवै रास हम मैले तुम उजल करते हम निर्गुण तू दाता हम मूर्ख तुम चतुर सिंह

पंथ प्यारे दे हुक्मां दी पालना करदे होए गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तिन्ना सिंघां सने चमकौर दी गढ़ी चों बाहर निकले। बूहा बंद हो गया। गुरु जी ने हथ ते हथ मार के जोर नाल कहा, सिखां दा गुरु जा रहा है, किसे विच हिम्मत है ता रोक लवो। नाल दे सिंघां ने जयकारे छड़ने शुरू कर दिते ते चमकौर दी गढ़ी विच सिंघां ने नगारे बजाने शुरू कर दिते।

सिरोवे होमिच भरिए होमिच धोवे होमिच जाती दिन सी खोवे होमिच मूरख हो।

कि जिस दिन बंदा कह देता मैं नहीं हाँ तू ही है, उस दिन कहने मनुख ईश्वर हो जाता है, परमात्मा हो जाता है। ईश्वर से मनुख के विचार अगर कोई दीवार है तो दूजा तीजा दीवार नहीं, मैं ही दीवार। और ऐसा ये व्यापक रूप में अजोके समय च मौजूद है। साहब कहने ये हमें आन जान का कारण बन गई है, ये बार बार जन्म दिलाती है। हाँ मैं यही बीज है, मैं हाँ तो परमात्मा कहता ठीक है तू है तू रह। साधना करते करते भक्ति करते करते जिस दिन मनुख की सुरत उस अवस्था से पहुंच जाए कि मनुख की जबान तो मैं ना निकले तू ही तो निकले, कहने उस दिन मनुख ही परमात्मा हो जाएगा, मनुख ही ईश्वर हो जाएगा। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के दरबार में भगत काना अपनी बाणी लेके आए सन, तो सतगुरु ने सुते सिद्ध किया भाई तू सुना तेरा कलाम असि सुनना चाहते हैं। उन्हें अपनी रचना इतों आरंभ की थी, मैं ओही रे मैं ओही रे। सतगुरु ने रोक लिया, कहन लगा नहीं ये बोल असि सुनने ही नहीं, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बिच दर्ज करना ते दरकिनार असि सुनने ही नहीं। जिस देश मनुख की मैं प्रगट हो गए, जिस देश मनुख की मैं का जिक्र हो गए, मैं का वाधा हो गए, ये बोल असी नहीं सुनने, ये बोल असी नहीं दर्ज करने, असी तो ये बोल सुनने ने, ये बोल दर्ज करने ने। तू तू करता तू भया, मुझ में रहा ना हूं, जब आपा फरका मिट गया, जत देखा

इस सतवीं पौड़ी के नाल दूजा श्लोक गुरु अंगद देव जी महाराज का उच्चारण किया हुआ, जो पहले पातशाह जी के पहले श्लोक के उच्चारण के नाल ही मेल खाता है। हौं विच आया हौं विच गया, हू बहु गुरु अंगद देव जी महाराज प्रमाण करते हैं, हौं में ए हा जात है, हौं में कर्म तुम्हार, हौं में भी जात की है, भाव इसकी पहचान किमें होगी, इसकी सूझ किमें होगी, इसकी समझ किमें होगी, सहज कहने के हर कर्म दे हावी होगी, हर कर्म विच मौजूद होगी। जो भी मनुख कर्म करेगा, हौं में वश करेगा, जितने भी कर्म हो रहे हैं, हर कर्म दे हौं में भी छा, मनुख की सारी भज दौड़ भी होमे नु वधाने वास्ते, मनुख की सारी सियाणप सूझ बूझ सारी शक्ति भी होमे नु वधाने वास्ते है। तो जितनी मनुख की होमे वध जाए, उतना ही परमात्मा छोटा हो जाता है। दृष्टि अहंकारी दृष्टि उदी मां तुच्छ है, उदा पिता भी कुछ नहीं, अहंकारी की दृष्टि विच वड्डा भरा की है कुछ भी नहीं। जितना वड्डा अहंकार होगा मां उतनी छोटी हो जाएगी, फिर उतना ही छोटा हो जाएगा, और अहंकार जितना ज्यादा वड्डा होगा निरंकार उतना ही छोटा हो जाएगा। कि शिखर पे पहुंचे होया अगर अहंकार होगा तो निरंकार मर ही जाएगा, परमात्मा नहीं रहेगा उसकी दुनिया में, मन उसकी दुनिया खत्म हो गया, हर नाकुश की दुनिया में परमात्मा नहीं है, परमात्मा खत्म हो गया, क्योंकि अहंकार चरम सीमा से पहुंच गया। जैसे जैसे मनुख का अहंकार वधता है, वैसे वैसे दुनिया में बाकी छोटे होते जा रहे, सब छोटे, सब मूर्ख, सब नादान, सब तुच्छ। इस वास्ते कहते हैं अहंकारी का कोई मित्र नहीं हो सकता, मित्रता तो होती है बराबरी के तल पर, किसी भी अहंकारी का कोई मित्र नहीं हो सकता, हर नाकस के कोई दोस्त नहीं सन। इस तरह की सोचने वाले इस तरह के अहंकारी मनुख जितने भी आते हैं उन्होंने कोई मित्र नहीं आते, हिटलर का कोई दोस्त नहीं सी। इतना शिखर का अहंकारी कि हर बशर हर बंदा उसके लिए कीड़ा मकोड़ा है और कुछ नहीं, जिन्हों पैर थले मसल दो। इस तरह के बंदे का कोई मित्र भी नहीं होगा, क्योंकि मित्रता लिए बराबरी चाहिए है, बराबरी के जज्बे चाहिए ने। अहंकारी किसी को भी बराबरी दे के राजी नहीं। तो साहब इतने गुरु अर्जन देव जी महाराज प्रमाण करते हैं, होमे की यह पहचान है कि हर कर्म देते होमे की छाप होगी, होमे प्रगट होगी, उस मनुख के हर कर्म दे उसका अहम भाव प्रगट होगा। होमे ए हा जात है, होमे कर्म कमाए, होमे ए ही बंधना फिर जो नहीं पाए। मनुख नु होर कोई बंधन नहीं, इसी होमे का बंधन है। मनुख के पैरों च होर कोई जेवड़ी नहीं है, इसी होमे की जेवड़ी है। होमे के संगल बार बार इसन इस धरती से पृथ्वी से खिंच के लिया, पिछले जन्म की होमे तो हूं का अहंकार सम्मिलित होकर होमे वधती है। इस वास्ते दिन प्रतिदिन मनुखी तल देते होमे वध रही है, अहंकार वध रहा है दिन प्रतिदिन, क्योंकि जन्म दर जन्म के नाल होमे संग्रह होती जा रही है और नवी होमे जन्म ले रही है। इस तरीके होमे के पहाड़ उच्चे होंगे जा रहे हैं, और जैसे जैसे अहंकार उच्चा होया वैसे वैसे निरंकार छोटा होया। तो साहब कहते हैं ये अहंकार ही बंधन है, आन जाने का कारण ये अहंकार है। होमे ए ही बंधना फिर जो नहीं पाए, ये बहुत सारिया जूनिया के बंधन अहंकार वसो के हैं, अहंकार करके हैं। होमे कितों उपजे कित संजम ए जा।

ना जाने मूर्ख है कोई, ना जाने मूर्ख है कोई, ना जाने सियारा सदा सहमते रंगे रहता, अंदर नाम खाना बाबा।

और जम परमेश्वर सतगुरु आपे करनिहारा, और ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु

नाम करता पुरुष निर्वाण निर्वैर अकाल मुक्ता जी सबंग प्रसाद असमय पहला वार श्लोक नाम श्लोक मल्ल पहले की लिखी तुम्हें अश्राज की तुम्हें श्लोक हरि गुरु अपने जो हरि।

के किसी संतों की सचो सच क्या है उन्हें मन देता है न रखे कर माया उन्हें दुनिया तोड़े बनना अन पानी थोड़ा खाया तू बस सी अगला निदे में चढ़े सुहाया।

अंक भांत कर द्वार न पाओ, अंक भांत कर द्वार न पाओ, होए कृपाल ता हर हर ध्याओ, कोट कर्म कर दे न सोदा, साध संगत में मन भर किसन न बुझी वो रंग माया, किसन न बुझी किसन न बुझी वो रंग माया, नाम

एक मूर्धन एक दर्शन की रूपानेक खेल खेल अखेल खेल नयंत को फिर एक देव देव न जानी जय बेदर्क देव रूप रंग न जात पात सो जानी के जेव तात मात न जात जाकर जन्म मरण विहीन चक्र बकर फिर चतर जाक मानी पर दीन लोक चौदांगी विखय जग जापी जय जाप आदि दीवनाद मूर्त थप सब जय थाप कर्म रूप विनीत मुहूर्त पूर्ण पुरख पारु सर्व सुर च्योसुम पवकर्ण भंजन हारु कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश धर्म धाम सु परम रहत भूतल कपेश अंग राग न रंग जाक जात बाधना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूपा मी कान सत एक पुरख बधूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आदि रूप सूत अंगहीन भंगनातम एक पुरुष पारु सर्वलायक सर्वकायक सर्व को प्रत पारु सर्वगंता सर्वहंता सर्वध्यन पेख सर्वशास्त्र न जाने जय रूप रंगार रेख परम वेद प्राण जाक नेद भागत नेत कोट सिमृत प्राण शास्त्र न आवई बहुचित मद पार शंभ दव प्रसाद गुणगण उदार में मा पार आसन भंग मान अंगवा जानबा आसन भंग उपमान अंग अनुभव प्रकाश निर्जन अनाश आजानबा शाहनशाह राजन राज पानन पान दीवान दीव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालन बाल रंकन रंक कालन काल अनुपूत अंग आप अंग गात्मित पार गुण गण उदार मुन गण प्रणाम निरपैने काम आत दुत प्रचंड मितगत अखंड अलिश्य कर्म दृश्य धर्म सर्वा प्रणाढ़ आन दंड बढ़ जाचरी छंद तव प्रसाद गोबिंदे मकंदे उदारे पारे हरियंग करियंग नामे कामे भजंग प्रयाद शंभ जदर जकर करता जदर जकर हरता जदर जकर दाने जदर जकर जाने चतर चक्र वारती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र माने आए चतर चक्र दाने आए चाचरी शंभ न सत्र न मित्र न परमंग न पितर न कर्मंग न काई जन्मंग जाई न चित्र न मित्र पर पवित्र प्रतिशा दिशा दृश कृश भगवती शंभ दग प्रसाद कथते क्या सज देश है क्या पज बेस है क्या गंज कर्म है क्या पज भरम है क्या पज लोक है क्या दत्त सुख है क्या भूत भरण है क्या भूत करण है कि राजंग प्रवाहेंगे धर्मंग तुझाए क्या शोक भरण है कि सर्वा भरण है कि जागतंग कृति है कि शतरंग क्षत्रिय है कि ब्राह्मण स्वरूप है कि अनुपा नूप है कि आदो दीप है कि आप पेव है कि चतरंग बहीन है कि कह दीना है कि रोजिर जाय कर ही मेरे हाय कह कि पाक बे है वह कि कह भुल गए वह कि आप बुल ग्रह के शान शाह के कारण कुनंद के रोजी दहंद है के राज करीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र माने आए के सर्वत्र दाने आए के सर्वत्र गौन है के सर्वत्र भावन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र राजा है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीना है के सर्वत्र लीना है के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र पाओ के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र द्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र माने आए सदैव प्रधान आएंगे सर्वत्र जापे आएंगे सर्वत्र थापे आएंगे सर्वत्र भान आएंगे सर्वत्र मान आएंगे सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग कलीमा के परमंग फहीमा के अगलोलाम है के साहेब कलाम है के उसनो बजूंगा तमाम रजू है हमेशल सलाम है सलीक समदाम है गनी मुल सकाशता गरी वल परास्ता अगल नल मकान है जमीन वल जमाना है तमीजल तमाम है रुजुवल नदान है हरी फुल जीमा रियाग जकीना नेकल तरंग है पेद पांग है अजी जल निवाज है गनी मुलख राज है निरोक्त स्वरूप है त्रिमुक्त भूत है प्रभुत प्रवाह है सुजुक्त सुधा है सदैव स्वरूप है बेदी अनूप है समाज तुभराज है सदा सर्वसाज है
सुमासल सलामस देवल काम है इंद्रवास रूप का दयान रूप है अंगाज रूप है नाज रूप है नंगी जना में त्रिपंगी त्र काम है त्रिवर्गं त्रिवादे गंजे अगाधे शुभम स्वरूप आगे सुसर्वान रागे त्रिभग स्वरूप सज्जा शूदय नरकं प्रणाश है प्रथियोल प्रवास है निरोक्त प्रवाह है सदैव सदा है विभक्त स्वरूप प्रज्योत अनूप है निरोक्त सदा है विभक्त प्रवाह है अनोक्त स्वरूप प्रज्योत अनूप है जाचरी शांत अपांग है नांग है पीख है लेख है परम है कर्म है अनाद है जुगाद है अजय है भय है पूत है तूत है अनाश है उदास है दंत है बंद है अभागत है विरक्त है अनाश है प्रकाश है निचंत है सुनंत है लिख है दिख है अलेख है पीख है अटाह गहाय संभ है गम है नीला नाद है नित जात जात है चरपट छंद दल प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं पुराणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसाबल शांतता प्रसाद नमो नरक नाशे सदैव प्रकाशे नंगंग स्वरूपे भंगंग भूते परमाधंग परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रगामे त्रिव निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात नृसागंग हरी गाय तोम ही गाय सदैव प्रवाह जय जाय भगवती शंग तव प्रसाद के जार जूर है के हाजर हजूर है मेसर सलाम है समाज तल कलाम है के सहब दिमाग है के उस चिराग है के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी दहन है के राज करहन है करीमल कमाल है के उसनों जमाल है गनीमल खराज है गरीमल नवाज है हरीफल सिकान है रासल पकान है कलंकंग प्रणाश है समाज तुल निवास है अकंजल गनीम है जय करीम है समाज तुल जवाह है के साहब गिरा है नरकंग प्रणाश है बैस तुल निवास है के सर्वल गवान है मे सुधर वन है तमाम तमीज है समाज तल अजीज है परम परमीश है समाज तल अधीश है अधीसल अलेख है मेसल अभेख है जमीनो जमा है मी कलमाए क्रीमल कमाल है गिजरो जमाल है के अचलंग प्रकाश है कि मितो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि मितो भूत है कि मितो बसा है कि आत्म प्रभा है कि अचलंग नंग है कि मितो भंग है मद पार शांत तव प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गण धाम हर भर गंज हर निरपुर भंज गण गण प्रणाम मुन मन सलाम हर नरय खंड हर नरय मंड अनुपवन आशु मुन मन प्रकाशु गुण गण प्रणाम जल थल मधाम अंश जे अंग आसन भंग उपमा पार गात्मे त्योदार जल थल मंड दिस विषय पंड जल थल महंत दिस बिस बेअंत अनुपवन आशु द्रैत दर्द रास आजन बाह कैस ओंकार आदि कथनी अनाद खलखंड ख्याल गुरवर अकाल कर कर प्रणाम चरण नाम अंश जगात अज जिना बात अंचन जगात अगरंजवात अणठ भंडार अणठ अपार अडीठ धर्म अतडीठ कर्म अण प्रणनंत दाता महंत हर भूल मनाशंद दव प्रसाद करुणालया है अरकालया है खलखंड है मैं मंडन है जगदेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व वारण है द्रत के धरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्ववास्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वम पर है सर्वेश्वर है जगदेश्वर है ब्रह्मांड से है कल खंड से है परते पर है करुणा कर है जप जप है सपा थप है अकृता कृत अमृत अमृत है अमृत अमृत है करुणा कृत है अकृता कृत धरणी धृत है अमृतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत अमृत अमृत है जपा कृत अमृत अमृत है निर्नायक है कुलकायक है विश्वम पर है करुणालय है नृपनायक है सर्वपायक है पव पंजन है यर गंजन है रपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्मा है सर्वात्मा है आत्मवास है जस के जास है भुजंग प्रयात छंद नमो सूर्य सूर्ये नमो चंद्र चंद्रे नमो राजराजे नमो इंद्रेन्द्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग ताम संग शांत रूपे
नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो बोझ बोझे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्रेन्द्रे नादिंब भूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस हसे नमो बांक भंगे अभंगी स्वरूपे अनंगीय नामे इंद्रभंगी दृगाले अनंगीय गामे एक श्री शंब अजया लय पया वय पुव जुगनास घास गंज पांज लख बख अकाल दयाल रेख भेख अनाम काम काटा नाथि प्रमाथे योनि होनि नर नरागे नरंगे नरूपे नरेखे करवंग भरवंग गंज रेखे भुजंग प्रयात शांत निवास तुल प्रणामे समाज तुल प्रणाशे गंजलो नामे समाज तुल निवास इंद्र कामंग बभूते समाज तुल स्वरूपे को कर्मंग प्रणाशी सुधर्मंग बभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी गरीमलक निंदा समाज तुल निवासी अजैव बभूते अजैव गरीमय हरियंग करियंग गरीम रहीमय चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर अजायब भूते जायब गनेमे हरियंग करियंग करीम रहीमे चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भुगते सुयम भव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अभंगंग भूते चतर चक्र वर्ती चतर

जिस आप बुझाए आप, जिस आप बुझाए सो बुझती निर्मल जन सोई। खंड ब्रह्मंड पाताल दीप रविया सब लोई। जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

गुरुकुल हरि अमृत आरंभ की गल नाल नाल तुरी जाने आखिर तक तुरी जाने देख आस्था दीवार जो चौवी छंत चौवी संतां दे नाल पौड़ियां उन्हां दे नाल जुड़े हुए शलोक बेशक वक् वक् थावें वक् वक् समें रचे गए संत ते है नहीं सत कपड़े दूर पौड़ियां जो असल वार दे रूप विच सन वखरियां नाल शलोक लाए गए सब कुछ वक् वक् गुरु अर्जुन साहब पातशाह जी दे वक्त कीर्तनी आस्था दी वार दा रूप प्रचारिया हुक्म होया गल है इनका कंसैप्ट दा आपस विच मेल ए साबित करदा है कि गुरु वक् वक् नहीं गुरु किसी समय दा पाबंद नहीं गुरु समय ते स्थान दे बंधन विच नहीं बंधन मुक्त है जिस समय स्थान दे बंधन विच होना एक समय स्थान दा बचन दूजे समय स्थान नाल की संबंध रखता है चौबीस लोग चौबी छंद चौबी पौड़ियां नाल शलोक वक् वक् समय की रचना कंसैप्ट किवें आपस में लड़ीवार बुनिया पे देश में भी यह गल है उत्थे हरी अमृत नाल लोयन भिजे ने सुरत भिजी लोयन सुरत कह सुरत भिजी हुण इत्थे गल आ गई हरी अमृत नाल देहुरी भिजी देहुरी है कि देहुरी देहुरी आप कंसेप्ट है देहु देहुरी आप देह की है कर्म खेत्र इनू आपस जोड़ के समझना देह की है कर्म खेत्र श्री गुरु ग्रंथ साहब ने बाणी में इस गल मान लिया कि शरीर कर्म खेत्र है

शरीर की कर्म धरती इस समय नाल रुत नाल युग नाल इस कर्म धरती शरीर विच जेड़ा कर्मां दा बीज बीजेगा कनके जिया बीजे सोलुने कर्म संग्रह के कर्म जड़े ने वो फसल जोड़ी फसल पैदा करेगा जे सवेर दे श्लोक वांगू हाँ दी फसल पैदा करेगा तो उन्दे विच कंडे ने ताकत हर रस साध ना जाने अगली लाइन पढ़ो ताकत हर रस साध ना जाने क्यों तिन अंतर कौमे कंडा कौ कंडा ये कंडे भी जिंदा कंडे उगंदे शरीर कर्म करती है एक तन जड़ा कर्म खेत्र है गुरु भाई छोटा भी आप दिखा कहने लगे अमल भी करना नहीं पे कहने लगे अमल कर धरती अमल कर धरती बीज समदो कर्म धरती है अमल भी करना नहीं पे जो जे अमल ने काबजे दे कर्म कहने लगे कर्म खेत्र धरती अमल तो तेन मिल गया कर्म खेत्र तो मिल गया हूं एक ख्याल रखी पता ही उसे होमे ना बीज लई कंडे ना पैदा हो जान आल दे शब्द बीज भाव गुरु दे बचन बीज तेरे कर्म विच गुरु दे बचन प्रवेश कर अमल कर धरती बीज शब्दों का सच अमृत है सच की आग इसलिए नु आबे हजार कहते पानी दे कर्म धरती पानी दे सच का किसान बन पता ही फिर की पैदा होगा होए किसान ईमान जमाएगा बस इन धर्म पैदा होगा क्यों ईमान की फसल पैदा होगी जे हों बीज रह जाई तो कंडे पैदा कंडे पैदा होंगे जे बीजे सोलुने कर्मा संग रखे हुन मसला यह है कि जेहोरी कर्म खेतर है गुरु ने ख्याल दे दिता कहने गुरु को है हरि अमृत ਕਿਹੜਾ ਰਹਿਮਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਹਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਤੇ ਹੋ ਦਿੱਤੀ ਭਾਵ ਹਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ ਕਰਮ ਖੇਤਰ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਜਨਮ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਸ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ

कभी खेत चले बड़ा कीमती है, कीमत तो जमीन नहीं है, धरती भी नहीं है। जिसके को धरती चंगी है, जरखेज धरती विश्वास पर वो जो मर्जी पैदा कर सके, धरती को ना उगल दी। जे तेन बीज पाना आ जाए, जे तेन रुत संभालनी आ जाए, जे तेन वत पछाणनी आ जाए, जे विश्वास कर, जे रुत ते वत पछाण लै, फिर तो ये धरती बड़ी कीमती है, सोना उगलती है। कर्म धरती भी जे तेन कर्म पछाणने आ जाए, ते तेन बीज पाना आ जाए, जे तेन तिरखानी करनी आ जाए, ते वो तो रब पैदा कर दिंदी है। करनी आपो अपनी के लेने के लिए कर्म ना तो तू रब न प्राप्त कर सकते, सोना तो कितने रह गया। ये कर्म करती बड़ी बलवान, बड़ी बलवान। इसलिए इस कर्म करती प्राप्त करने का जिक्र कर दिता कि गुरसेवा के भगत कमाई तब ए मानस देही पाई। इस देही को सिमर देव क्यों, बड़ी कीमती करती है। तो देही पाज हर की से तेन पता लग जाए इस कर्म धरती कुछ पैदा हो सकता है। कह लगे भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का यही लाओ। तेन पता हो इस धरती की बिगड़ी, इनकी रुक से वत किने संभालनी। गुरु कह लगे कर्म धरती है, तो गुरु ने रहमत करके मेरे इस कर्म धरती देन देहरी में हरी अमृत नाल सिंज दिता, प्यों दिता, सत्य अमृत नाल प्यों दिता। भाव मेरे कर्मां विच सच समा गया गुरु की रहमत नाल। गुर अमृत भिन्नी देहरी, हर अमृत बुरके, बुरके तो भाव हुंदा छुट्टे मारने, छिड़काओ करना। गुरु ने अमृत में छिटे मारे ते देहुरी दे जीवन दे जन्म दे जेले कर्म सन उना विच सच समा, कर्म विच सच समा। गुरु अर्जुन पातशाह जी शब्द श्री सुखमणी साहब विच कई बार पढ़ दे, जदों अंदर कर्म विच सच समा जांदा है ना, उनकी परिभाषा उनका रूप गुरु अर्जुन पातशाह जी ने चित्रिया। कहने लगे उनकी निशानी की होंगी है सच कर्म की, क्योंकि कर्म विच सच समा गया। सच करनी सच तांती रह, जीवन की प्रति बदल जाती है, उनकी करनी विच भी सच आ जाता है, उनकी रहत बैत रहनी बहनी विच भी सच आ जाता है, उनके हिरदे विच भी सच आ जाता है। हिरदे तो जदों मुंह तो कुछ बोलता है, उदों मुंह विच भी सच आ जाता है। सच हिरदे सत मुख कह, सच अमृत में कर्म भिजते हैं, ब्योरी भिजती है, करनी बदलती है। तो जदों झूठ नाल ब्योरी भिजती है, झूठ नाल जीवन के कर्म संबंधित होंगे ने, उदों की होंगे रहत अवर सच अवर कमावे। जो असलियत ना हो, जिदा असलियत ना होवे उसी झूठ आखने। कोई वो गल करे जिस गल में असलियत ना हो, असी कहने झूठा है। गुरु कहने जब झूठ नाल सच की बजाय झूठ नाल जीवन के कर्म संबंधित होंगे ने, उदो मनुख की बनता है, रहत अवर कछ अवर कमावत। मन नहीं प्रीत मुखों गंध लावत, वह भी सुखमणी साहब की लिख दिता। मन नहीं प्रीत मुखों गंध लावत, क्योंकि सच जिन मन होर मुख होर सिखा दे कचिया। तो गुरु कहते हैं जदों सच नाल कर्म भिज जाण देवरी तो भाव कर्म खेत्र, जदों सच जरा वह कर्म खेत्र में सिंजिया जाए उदो की होंगे। कहते उनकी निशानी यह है सच करनी सच ताकी रह, सच हिरदे सत मुख कह,
सच्ची दृष्टि, सच्चा आकार, सच वर्ते, सच्चा पसार, कहन लगे पार ब्रह्म जिन सच कर जाता। हरि अमृत हमारे जन्म संज्ञा के कर्म धरती सिंजी गई, देवरी सिंजी गई, क्योंकि देवरी का अर्थ ही कर्म धरती। लगे पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सो जन सच समर्था। जन्म सच नाल तज गया, गुर अमृत, गुर अमृत के नी बेहोरी, हर अमृत गुर के राम राजे छिड़काव किया। हूं केवल देह से छिड़काव किया, न कहेंगे निरी ये गल नहीं। जिन्ना ने गुरु शब्द को पछाण लिया, जिन्ना के मन का संबंध बाणी नाल जुड़ गया, उन्होंने केवल देवरी कर्म ही नहीं तिजे, केवल विहार ही नहीं तिजे, उन्होंने अंदर मन अंदरले विचार भी भिज गए, क्योंकि उन्होंने अमृत मेरा उत्ते ही नहीं बुरकिया, उत्ते ही नहीं छिड़किया, पी भी लिया। पीन का मतलब होंगे अंदर चला जाने, छिड़कन का मतलब होंगे उपर। कर्म जड़े ने बाहर की जिंदगी ने, विहार जड़े ने बाहर की जिंदगी ने, विचार जड़े ने अंदर की जिंदगी ने। गुरु कहते होंगे अंदर से बाहर दोवों पास अमृत है, उनका अंदर से बाहर वक् वक् ने, जिन मन होर मुख होर नहीं, उपरों दिखावा कुछ होर से अंदरों सोच कुछ होर, ऐसी जिंदगी नहीं, ऐसा जीवन बिल्कुल नहीं। उनके बाहर भी अमृत मुड़किया गया, अंदर भी उन्हें अमृत पी लिया।

अमृत छक छके लो आ है अमृत छक ये है अमृत छक मैं कहती थी जो चीजा खंडे दे अमृत विच भी गुरु साहब ने बख्श करके शामिल कीतियां ना जेडियां वस्तुआं भी शामिल कीतियां ओ भी गुरबाणी दे कंसेप्ट रूपी अमृत नु लै के बैठियां ने जो अमृत छकने ना गुरबाणी का कंसेप्ट अंदर जाता है केवल पांच प्यारे नहीं पांच वस्तुआं भी खंडा बाटा पतासे खंडा बाटा पतासे पानी ते बाणी पांच चीजों ये पंजो चीजों की लोड़ है खंडा बाटा पतासे पानी ते बाणी हुण हर चीज है अपने गुण ने हर चीज का अपना लाभ है और लाभ भी वो गुरु के बाणी के शब्दों के बचना के अनुकूल है अगर किसी पतासे में पैदा गुण है और ऐसा गुण है जेड़ा आदमी स्वभाविक ग्रहण नहीं कर सकता बड़ी मशक्कत है उन धारण करने कि पतासे जड़े ने अपनी ऊपरली वक्री होंद खत्म कर देने जो जाते ने पानी में पांच मिनट बाद देखो पतासे को अपनी होंद खत्म हो गई पर अपना गुण नहीं छड़िया उस पानी का घुट भर के वेखो उनके मिठास मिठास का गुण देगा अपनी होंद खत्म कर वक्री होंद खत्म हो गुण नहीं त्यागी होंद त्यागी हों त्यागी क्योंकि वक्री होंद हों सी अज सवेर वाली कंपनी वक्री होंद एक हों सी वह त्याग दी हूं वो पतासे नहीं गए कोई आखेगा पतासे कितने ने कोई नहीं पांच मिनट पहला अपनी हसी पाए सन हूं कितने ने कोई नहीं बखरी हूं खत्म पतासा ना ही खत्म पर मिठास है गुण है तो मैं उसका व्यवसाद में संस्था बचने का लंबा हो जाएगा मैं कह रहा हूं हर एक वस्तु जी खंडे बाटे के अमृत में भी एकत्र की वो सारे ही कंसेप्ट श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी के गुणा के एकत्र की इसलिए गुरु ने आख्या जिन्होंने गुरु की बाणी नाल प्यार पैदा संदेह न्यू पैदा हो गया ना उन्होंने अमृत छक लिया

जिस दिन भटकना खत्म हो जाए, हरी अमृत नाल अंदर ते बाहर सिंधिया जाए, उस दिन हरी विच ते हरी जान विच कोई अंतर नहीं रहेगा।

0: हर हर होया नानक हर टिके।
1: हरी जान हरी विच कमा गया, वखरा नहीं उनके वर्गा बने, फर्क नहीं। इसे यकीन से गल कह दी नानक हरी के हरी कोई लिया ए नहीं कि हरी जन दे हरी जन जरा बराबर का एक होर हर बन के बह गए। गल हर थान से सदगुरु ने बड़ी स्पष्ट की, हरी जन जरा है वह हरी विच समा गया, एक वखरा हर बन के नहीं बैठा। यह नहीं कि अपनी गद्दी कोल ला पवे श्री गुरु ग्रंथ साहब से आख्या भी गुरु है मैं भी एक मत उन्होंने टेक लैके मैंने टेक लिया। एक वखरा हरी बन के बह जाए, एक वखरा गुरु बन के बह जाए, आखिर मैं भी गुरु हूं तो लोग भी आखन श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी की कोई समझ थोड़ा आँगी जिनी देर सू गुरु ना मिले वो सू समझाए ना हूँ नाल श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी में जुड़े बैठे ना उन समझाने वाले का जुड़े बैठे एक बराबर खड़ा हो। पर गुरु कहते नहीं हरी जन हरी में समाया है पर हरी एक ही रहा है, दूजा हरी बराबर से नहीं बैठा, उन्होंने ये अधिकार नहीं कि वखरा हरी बन के बह जाए। इसलिए हर इक्के फिर कह दिया।

को देखना है कि मेरा रब, मेरा प्रभु, मेरा हरि संसार अंदर हर जीव में किस तरह साज रहा है, कि साज के फिर उन्हें संभाल रहा है, उन्हें पाल रहा है, उनकी संभाल ना कर। ऐनी वड्डी लिस्ट उनके कोल है, दो चार दस भी पंजा आदमी के परिवार में संभालना औखा होंगे। ब्याह शादी में पता नहीं किन्ने किन्नी अनगिनत दुनिया से अनगिनत जीव जंत ने जिन्होंने पैदा किए, फिर टाइम से सब रोजी के साधन बना दते। गुरु नानक ने आखा हक्का हे मेरे रब, हक्का हक भव रब प्रभु अल्लाह, हक्का कबीर करीम तू, तू बड़ा भी है ते रहमत करने वाला भी है। कबीर बड़ा, करीम कर्म करने वाला, रहमत करने वाला, तू ऐसा बेऐब है, तेरे बच्चे ऐब कोई आ ही नहीं सकता, कोई मैल है ही नहीं, ते फिर तू परवरदिगार भी है, संसार में रोजी दे रहे हैं। तो इतने गुरु नानक पातशाह जी ने श्लोक शुरू कर दिया, कहने लगे जदों हर जन हर हर होया ना,

कि महाबलीपुर में असि संग्राम कर सकने, युद्ध कर सकने, इथो तक मजबूत इरादे नाल कर सकने कि साडे प्राण जिहड़े ने उह रण भूमि विच ही खत्म होणगे, पिछ दे के नहीं आवणगे। गुरु ने पता जो उन्होंने की आख्या, कह लगे मैं देखे ने जिहड़े कर पर्वत पंथ हिले ना हिले, इस किस्म के मजबूत इरादे वाले रण भूमि के योद्धे जिहड़े कहिंदे ने वी पर्वत नूं पहाड़ नूं तां खंभ लग के पहाड़ अपना ठिकाणा छड़ सकदा है, किथे हट सकदा है जदों खंभ लग जाण, पर असीं नहीं हिलांगे, असीं पर्वत नालों मजबूत आ। कर पर्वत पंख हिले ना हिलेंगे, तोर अरीर मरोर मवासन माते मतंगन मान वाले मस्त हाथियों के मान शक्ति तोड़ दिया, माते मतंगन मान मलेंगे। पर गुरु कहने नहीं, श्रीपत श्री भगवान कृपा बनी त्याग।

है, केवल सच्चा कर्म ही कार्य करती है। जो जीवन के कर्म देहुरी जड़ी कर्म खेतर है उनके सच नहीं समाया तो कुछ भी नहीं, सब मिथ्या है। कहने लगे निशान मोर वाली चीज, निशान वाली चीज जड़ी है वो केवल सच्चा कर्म, कर्म सच्चा निशान। कहने लगे जी फिर जे कर्म सच्चे तो बिना कुछ नहीं, जिन्नी देर कर्म विच देहुरी विच सच ना समाए बाकी सारे कीते हुए जप तप संयम अधूरे ने, मिथ्या ने। पर दसो जी सच कि मिले, सवाल पैदा हो गया सच कि मिले, सच कितों मिले, ताकि जीवन के कर्म पवित्र हो जाए, ज्योरी पवित्र हो जाए, सच कितों मिले। पौड़ी आ गई, पौड़ी आई जवाब में

0: संत शरण जो जन परे सो जन उदरन हार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपद संत के दुखन यार जगत है
1: संत के दुखन जंत नहीं छूटे
0: संत के दुखन चुक सब जाए
1: संत के दुखन नरक में पाए
0: संत के दुखन मत होए मलीन
1: संत

गया थे फिर गर्भास ना परयारे बलयो चराग अंधियार में सब कल उदरी एक नाम धर्म प्रगट सकल हर भवन में।

मेहंदी खाने के स्टैंड से सलामत मैं गुरु को नौकर सा मेरी 6 महीने की तनख्वाह रही थी जदों मैं तनख्वाह मंगी तो गुरु ने मेनू कोरा जवाब दे दिता मैं बादशाह सलामत को फरियाद करने बारे कहा तो मेरी बेइज्जती करके मार कुट के दरबार विच धक्के दे के कर दिता गुरु ने गुस्से विच आके जो कुछ हजूर दी शान दे खिलाफ किया मेरी जुबान बयान नहीं कर सकती शहनशाह वो अपने आप नू सच्चा पातशाह ते हजूर नू झूठा बादशाह कहंदे जिन्ना भी हो सकिया कहंदे खाने गुरु जी दे विरुद्ध किया बादशाह दे दिल विच पहला ही गुरु साहिब वास्ते साड़ा सी वो कहंदे खान दीआं गल्लां सुन के भड़क उठिया ते उसने अपने जरनैल काले खान नू बुला के गुरु साहिब ते हमला करन दा हुक्म दे दिया।

पग तुमनार है गुरु सत गुरु पासे राम राजे। भक्ति दा खजाना गुरु कोल है, गुरु सच दा शाह है, शाह उसनू आखदे ने जिंदे कोल बहुत वडमुल्ला ते अमुक खजाना हो, बहुता अमीर हो ते लोड़ वेले किसे नू देवे भी। पुराने समय अंदर नगर में पिंड में भी छोटे छोटे शाह होंगे, उन्होंने शाह क्यों कहते सन? हर अमीर आदमी शाह नहीं है,

लेख लता विलास परम उजरे विलास विकास यह है भक्ति का एक तरीका। हूं एक मसला खड़ा हो गया क्योंकि गुरमत विच दो पहलू बराबर खड़े ने। एक पासे है बिन नाम जो गुरु सतगुरु ने बाणी गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने आख दिता कहन लगे हर के नाम बिना दुख पावे भगत बिना सह छे गुरु ये भेद बतावे गुरु ने भेद दिता भक्ति बहुत जरूरी है बिन भय भगती तरन कैसे और दूजे पास भी आ गया ज्ञान भी होना गावे गीत मुकाबले दूजा पक्ष ज्ञान भगती ज्ञान का आपसी रिश्ता है भगती ज्ञान का आपसी संबंध है यह भी आख दिता ना जा ज्ञान तय कर पाए भगती करनी है ये भगती है जो गुरमुख करे साई भगत हो गए हूं यह है कि गुरमुख करे कि इन्हे भी ज्ञान चाहिए गुरु का भगती का संबंध की है क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं सतगुरु ने बाणी में बार बार एक गल समझा दी कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए ज्ञान का बद्दा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए गुरु बिना ज्ञान नहीं हम गुरु का ज्ञान प्रति फंक्शन की है समझा देना जुगत दस देनी कि तू करना की कल भी लफ्ज आए सन जुगत दस रहे ने तू करना की है हूं मसला इतने ज्ञान का आ गया क्योंकि जो सचमुच एवें है कि जो गुरमुख करे साई भगत होवे

परम पैदा होते थे। आपने लफज आए सर, देखो भाई ज्ञान की आई आंधी, जो ज्ञान की अंधेरी आँगी उत्थे परम खत्म होंगे, पढ़ के परम पैदा होंगे। जिन्हों पता ही कुछ नहीं उन्हें परम भी की करना, तर्कशीलता भी तो पढ़े लिखे नहीं करनी, जिन्हें कोई पढ़ना पर उन्हें अपनी पढ़ाई से तर्क रखना। अकाली किसी नीच के मन में ख्याल आया, आखिर जी होम से जन्म का की मतलब होया, बच्चे ने जमदिया कहड़ी होमें करनी, तर्कशील मन बच्चे ने जन्म लिया वो जमदा कहड़ी होमे च पैदा, होमे जमिया की होया सोचियो, जाके टॉपिक नु बीच समझ नहीं सकिया, तर्कशील क्योंकि उसे एक गल संबोधन किया जा रहा है कि जो होंद वक्री पैदा होंगी है उतों हां का बीज पै जाता है। जिस दिन तू जन्म लिया उस दिन तेरी एक वक्री होंद ने जन्म ले लिया, सारी जिंदगी वो बीज जेड़ा सी वधना शुरू, अजय ठीक है जो बीज है उदों नू फल नहीं लगे, उन्हें आप होमे नहीं की, अपने विचों किसी जन्म नहीं दिता, बीज ने अजे अपने किसी जन्म नहीं दिता, ज्यों ज्यों वड्डा हुंदा जाना बीज ने त्यों त्यों ही उन्हें अपने फिर टाणियों जन्म देना है, फिर पत्तियां जन्म देना है, फिर फुलां जन्म देना है, फिर फलां जन्म देना है, उनके अपनी किस्म का स्वाद भी हो जाना है, उन्हें अमरूद वर्गा स्वाद नहीं अंब ने अंब वर्गा स्वाद ही रखना, मेरी अपनी होंद है मेरे न लगा हुआ फल अमरूद वर्गा रस किवें पैदा करे, मैं अंब हाँ वो अमरूद है, मेरिया टाणिया न लगे हुए पत्ते दूजे दाणिया न लगे हुए पत्तिया मेल के खान, मेरी अपनी होंद है लेकिन जो बीज थी उदो कुछ भी नहीं, जो बीज थी उदो न पत्ते वखरे सन ना टाणिया वखरी सन ना फल वखरे सन ना स्वाद वखरा सन, लेकिन उस बीज में छुपया बैठा सी उसके बीज ने बढ़ के वखरे पत्ते बनाए ने टाणिया।

क्योंकि भक्ति नाल ज्ञान की लोड़ है। भक्ति है कर्म की खुद नाल, जो गुरमुख करे साई भगत होवे। वो जो करना है उन्हें ज्ञान की लोड़ है, की करना है की नहीं करना, इसलिए ज्ञान से भक्ति जुड़िया हुआ। ज्ञान नू निरी विद्या से निर्भर न करी, निरा पढ़न से निर्भर न करी। कोई बहुत पढ़ रहे तो उनका मतलब यह नहीं हो ज्ञानी हो जाए। गुरु आखते हैं

दिन रात करते मतलब ना गर्मी में जाग रहे ने जुल्म कर रहे ने अपने जिंदगी अपने शरीर अपने जीवन में मन बिगुत्ता कई लोग बोलना छोड़ देंगे गल नहीं करनी तो पहले यार रब ने कोई गलती की थी तेन जबान देने वाली तेन से लोड़ करी अपने तेरे मुंह से जबान पाई हां तू ए गुरु को ज्ञान हासिल कर के बाबा बोलना क्या कहिए बस आ गया ए नहीं के बोलना ही नहीं ज्ञान विच ते कर्मकांड विच भी अंतर कर्मकांड जिहड़ा मूंह धारी बैठा वो कहिंदा बोलना नहीं साडे विच भी आ गया आदि मोनी साहब ने क्यों कई ने वरिया तो बोले नहीं इसलिए महान ने साढ़े भी मोनी पैदा हुए ते गुरु ने आप दिता गुरु कहते नहीं जबान बोलन नहीं बनी है रब ने कोई गलती नहीं की तेन जबान देने वाली उन्हें तेन बोलन की दिखती है हां ज्ञान की लोड़ है कि तू बोलना की है

लेकिन बोलना ना शादी। मन भी गुप्ता मन धारण करने में ही अपने जीवन का समा गुआ रहा है। गुरु के मेरे पर इस अज्ञानता की नींद जगाए कौन, इस अज्ञानता की नींद गुरु ही जगाए, यह फैसला भी सत्यू करते।

हमसे ही रिपर जाने पग उपे ताने में पगो पेताना पाना का मतलब होंगे जिंदे उपे कुछ पहने होंगे ते पेताना का मतलब होंगे जिंदे ते कुछ ना पहने होंगे पगो पाव पैरां पे पेताना बिना कुछ पहने नंगे पैर है ना जैन मत वाले रहेंगे अगर मेरे पैर में जुत्ती पाई तो उन्हें थले आके मत को कीड़ा मर जाए हिंसा परमो तो हम उपासित जरूर में पैर में जोड़ा नहीं पाऊंगा ते गुरु ने आख्या कहन लगे पगो पेताना अपना किया कमाना कहन लगे तू कर्म ही ऐसे कीते ने तेनू पैर में

अलमल खाधी फिर से सुआ पा लई जटामा बना लई मूर्ख अंधे पाप गवाई ज्ञान भी होने अज्ञानता दे विच अंधे होए होए मनुख ने अपनी पत मान इज्जत खूबसूरती सब कुछ गवा लिया।

0: रहमत करे आंधी चोली ये पक्षी पैदी है जी गुरु को जो पै जाती है ना उदो सारे अंदेसे खत्म हो जाते हैं सारे लालच आसां खत्म हो जाए बल्कि गुरु का शब्द उनके अंदरों जिहड़ी हमें सब तो वड्डी रुकावट सी ना उन्हें भी जला दिंदा है गुरु शब्द जला दिंदा है आंख अंधेरे ते ने केवल हमें शब्द जलाए गुरु कहते जिंदे अंदरों हमें शब्द जला देवे ते ज्ञान गुरु का बख्शिया होया जीवन की करनी की जुगत आ जाए ते वो करनी भगती बन जाए ऐसा भगत जिहड़ा प्रभु के दर से प्रवानी ऐसा भगत प्रभु के दर से प्रवानी यह गल सतगुरु पौड़ी भी चाहता है
1: पौड़ी भगत तेरे मन भावदे
0: जिन्हां कोल भगती के भंडार गुरु नानक गुरु को मिली हुई भगती के भंडार का खजाना है

अपना अनहोंदा आप गणाएंदे तो अपना मूल नहीं बुझे साडा करन हर कौन साडा करता कौन साडी जुगत जी दी किंदे हाथ विच है ओ नहीं बुझे बल्कि सब कुछ अपना समझ के सब कुछ साडा है ओ हां विच प्रवेश रहंदे अनहोंदा आप गणाएंदे ओ सारी जिंदगी उन्हां दी हों ही वड्डी हुंदी जांदी अनहोंदा आप गणाएंदे गुरु कहंदे ने इसलिए अरदास कर हम धाड़ी का नीच जा जेड़े अपने आप नु उत्तम अखवान वाले ने ना जिन्ना दे अंदर हां खलोती भावे विद्या दी भावे पढ़ाई दी भावे पदार्थ ये सतगुरु मेनू इन्हां विचों कढ लिया मैं तेरा मैं तां गरीब हां मैं तां नीवा हां मेरे कोल कुछ नहीं ना हम किया ना करेंगे ना कर सकते सर मेरे को तो कुछ नहीं हम धानी का नीच जात हो उत्तम जात सराए कह लगे मैं तो उन्हां दी संगत मंगना जेड़े गुरु दे बख्शे हुए ज्ञान राही कर्म भक्ति नूं वसाउंदे ने नाम भक्ति बन जाने

राम कली महला की जा आनंद क्यों का सतगुरु प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु का पाया सहज से तीमन वजिया राग रतन परवार परियां शब्द गावनियां शब्दों तक

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु गुरु मंत्र शब्द प्रभु दे बेअंत गुणानी जीव दे हिरदे विच आनंदित करके सूरत में अपने मन में समा लेंदा है। वाहेगुरु शब्द का अर्थ विचार करके देखिए तो वाहेगुरु दे सार्वतिक अर्थ हैं वाह तू बेअंत गु अंधेरा रू दूर करना यानी कि अज्ञान दे अंधेरे में दूर करके ज्ञान दा प्रकाश करन वाले तू बेअंत है। जे वाहेगुरु ने हिरदे विच हाजर नाजर करके समझ के निचे नाम जपिया जाए ते पहले ता अंतर करन दी मैल दूर हो जांदी है और प्रेम दी रंगत चढ़नी शुरू हो जांदी है। फिर वाहेगुरु दे प्रेम दा नशा इन्ना बढ़ जांदा है कि शरीर अभाव हो जांदा है क्योंकि सूरज शरीर तो ऊपर उठ के शब्द गुरु विच लीन हो जाती है अते हर जीव विच प्यार ही प्यार नजर आउन लग पैंदा है। उस जीव में हर जीव विच परमात्मा की जोत दिसती है। भाव यह है कि वाहेगुरु दा जप करन नाल हमें दूर होंदी है। वाहेगुरु गुरु मंत्र है जप होमे खोई। हे मेरे वाहेगुरु दया करो बख्शिश करो रहमत करो कि सारे मिलकर एकाग्र चित होके कमर सिद्धि कर अखा नु बंद करके वाहेगुरु दे शब्द विच लीन होके संत अनूप सिंह जी ऊना साहिब वालिया नाल वाहेगुरु वाहेगुरु दे शब्द दा सिमरन करी।